ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून 2026 सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से

0: और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं ब्रिगनेनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
4: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
5: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
6: ऐसा करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
7: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
8: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
9: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल

0: चाहे कोंकणगो और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रोटरडेम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रांग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
3: जब समुद्री विरासत की बात होती है, तो

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh
2: and benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स माय लवली एंड ऑसम लिसनर्स अपनी खान सुखी प्रोग्राम में स्वागत करी है से आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रगबान 103 मेगाहर्ट्ज ते अपनी खान लगा होस्ट और दोस्त आरजितम जिन लगो दे माय डियर फ्रेंड्स विल टेक अ वेरी यू नो इंटरेस्टिंग म्यूजिकल जर्नी बैक टू द अर्ली 1980s A golden era when melodies touched hearts and lyrics painted beautiful emotions. Well, my dear friends, aji hit songs program de amikhan sopi huniyabo early 80s la kisman hit songs kan amikhan olob yaad korikina huniyabo. Aro my dear friends, 80s la decade bra amikhan ge ekta unforgettable voices Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Mohammad Rafi, Noeli B, Suresh Warkar Nishna, Itukan Laga Awaste, Aro Jagjit Singh Khan Nishna, Aro Jaswant Singh Khan Nishna, Awaste Amikhan Ge, Itu Nishna, Unforgettable Voices Ani Dita Kese, accompanied by music directors such as Arti Parman, Khayyam and Bapi Lahari, who created timeless magic. So my dear friends, for the next about 45 minutes, To be precise, sit back, relax, aro enjoy kribi ekta evergreen classic, and let this classic songs brighten up your morning as we revisit some Bollywood's most cherished songs from the early 80s. To yate poila geet huniyabo Jagjit Singh aro Anuradha Barwal avaste Prem Geet Filmra. Music this is Jagjit Singh, lyrics Indevar. Hunikina enjoy kribi, my dear friends.

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, अपने कंसोपिट्यून इन क्रिकना से आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रगुबान 103 मेगाहर्ट्ज से अपने खान लगा होस्ट और दोस्त अर्जितम जिन लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स अपने कंसोपी होनी है से एसएमएस रिक्वेस्ट हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम तो अपने कंसोपी आज अपनी कहानी शुनी बोले मन जा लगा एक गीत लिखी कि ना यहाँ रिक्वेस्ट कर फोन नम्बर आसे 9436805333 और एक बार फोन नंबर कह दिए 9436805333 तारे एफएम स्पेस एच टाइप करके रिक्वेस्ट मैसेज लिखी ना बताई दी एज वी वेट फॉर योर मैसेजेस लेट अस लिसन टू द फर्स्ट ट्रैक पार्फी फिल्म ब्रा अरिजीत सिंह लगा उस टाइम गान शुनी हम म्यूजिक दिशा प्रीतम लिरिक्स साइड गाथरी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली एंड ऑसम लिसनर्स, अपनी कन सबके आगो प्रोग्राम दे स्वागत करिया से आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रगुबान 103 मेगाहर्ट्ज दे अपनी खलागा होस्ट और दोस्त अर्जितम जन लगदा। वेल माय डियर फ्रेंड्स, इटिया पर लगिना एक बजे तक अपनी कनी एकटा नॉन स्टॉप 1975 सेल किसमान हिट सॉन्ग्स कन अपनी कन हुनियाबो। तो यदे बयला गीत आनी दिए से खेल खेल मे फिल्म रा किशोर कुमार और आशा भोसले अवस्थे म्यूजिक दिस आर डिपार्टमेंट लिरिक्स कुलशन बौरा। इतु पिछित अपनी गान हुनियाबो एंड इवनिंग इन पेरिस फिल्म रा अवारा छोरी छोरी चुपके चुपके और अलबेला फिल्म कान ब्रा अपनी गान हुनिया हबो हुनिकिना एंजॉय करबी माय।

आज गुजर लो, अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल का।

ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता हूँ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और

अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तेसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। और अगर आपने ट्यून इन कर लिया है आकाशवाणी रेनबो, तो रेनबो हेल्पलाइन का वक्त है ये। और रेनबो हेल्पलाइन में आज एक खास विषय पर चर्चा होने वाली है, और वो विषय है स्पिरिचुअल इकोनॉमी। आपके साथ हूं मैं सत्य, और रेनबो हेल्पलाइन में स्पिरिचुअल इकोनॉमी पर बात करने के लिए हमारे साथ भी एक खास मेहमान है। स्पिरिचुअल इकोनॉमी अ न्यू इंजन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में, जो कि सहायक प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में। आपका स्वागत है सर।
2: जी धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
1: तो डॉक्टर राकेश आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, जो भी आप जानना चाहते हैं स्पिरिचुअल इकोनॉमी के बारे में, वो सभी हम पूछेंगे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह से। और साथ ही पहला प्रश्न सर आपसे यही है, स्पिरिचुअल इकोनॉमी ये जो टर्म है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से परिभाषित करेंगे?
2: देखिए सत्य जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था भारत के मूल में है, और हम आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था को एक टेम्पल इकोनॉमी से जोड़ते हैं। साथ ही साथ हम उसको जो वेलनेस है, आयुर्वेदा है, ये सारे जो भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे भी काम चल रहे हैं, उससे जो जिस तरीके से मानवों का कल्याण हो रहा, उसको हम उसमें देखते हैं। आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था हमारी देश की एक बहुत ही बुनियादी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई चीज़ है, जो भारत को हम विश्वगुरु कहते हैं, और हमेशा भारत जो है विश्व को एक दिशा देता रहा है अध्यात्म के क्षेत्र में। वेस्ट जो है विज्ञान की तरफ बढ़ा, ईस्ट जो है हमारा भारत जो है शुरू से गुरु और परंपरा की तरफ आगे है। तो उस परंपरा को आगे बढ़ते हुए किस तरीके से जो भारत की गुरु जो गुरु हैं और हमारी जो परंपरा है, वो किस तरीके से इसमें अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है, अगर हम संक्षेप में बोले तो वो आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के टेम्पल इकोनॉमी, आयुर्वेदा, वेलनेस इंडस्ट्री, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं।
1: तो दायरा बहुत ही विस्तृत है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब स्कूल में जब पढ़ते थे तो अक्सर हम अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लेकिन स्पिरिचुअल इकोनॉमी के बारे में आज बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह से। इस स्वागत गीत के साथ आगाज करते हैं इस घंटे का, इस प्रोग्राम का। रेनबो हेल्पलाइन पर इस वक्त आपके साथ हूं मैं सत्य, और हमारे साथ हैं मेहमान विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार सिंह।

0: तो भाई अगर स्पिरिचुअल इकोनॉमी पर बात हो रही इस खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज हो तो फिर क्या बात है। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं इस वक्त आज विशेष मेहमान के तौर पर स्पिरिचुअल इकोनॉमी पर बात करने के लिए। सर अगर हम बात करें पिछले एक दशक की एक डेकेड की तो स्पिरिचुअल इकोनॉमी का केंद्र क्या रहा, कहां से इसकी शुरुआत मानते हैं, कहां पर ये सबसे ज्यादा इस इकोनॉमी का योगदान रहा अगर राज्यवार देखें क्षेत्र के हिसाब से देखें तो।
1: देखिए पिछले 12 साल में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ जी के मैंने देखा हूँ लीडरशिप में काफ़ी कार्य हुए हैं। आप किसी भी सर्किट्स की बात करें, आप अयोध्या सर्किट्स की बात करें, आप पाके बिहारी कॉरिडोर सर्किट की बात करें, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सर्किट की बात करें, अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हमने देखा किस तरीके से प्रयागराज में जो है कुंभ मेला का भी आयोजन किया गया, 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर आए
0: जी।
1: जो आर्थिक आंकड़े कहते हैं कि यूपी राज्य की अगर हम बात करें जो कि एक रोल मॉडल की तरह प्रदेश को एक एक संदेश दे रहा है, तो उसमें हमने देखा कि कैसे यूपी में 156 करोड़ लोग अभी तक 2025-26 गत वर्ष में अभी तक वहाँ पर आ चुके हैं। तो इतनी बड़ी आप देखते हैं संख्या में लोग आना, उनका जो रुझान होना एक आध्यात्मिक केंद्र की तरह, ये इट्सेल्फ एक शो करता है कैसे भारत में जो एक नई तरीके से स्पिरिचुअल इकोनॉमी जो है उसमें एक नया एक मोड़ ले रही है और आगे तरफ से बढ़ रही है। इसके पीछे मुझे लगता है जो एक बहुत बड़ा कारण रहा है वो सरकार के द्वारा की गई जो बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या रिटेल सेक्टर की बात करें और भी इससे जुड़े हुए क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं वो बहुत ही लाभदायक रहे हैं। देखिए मैं इसमें एक बहुत बड़ी बात आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो स्पिरिचुअल इकोनॉमी का जो हमारे देश में काम हुआ है इसमें एक जो देखते हैं कि विकास के साथ आस्था ही, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक पंचलाइन है कि विकास भी और आस्था
0: भी,
1: तो दोनों को साथ लेकर के हम कैसे आगे बढ़े और उसमें भारत ने एक विश्व को एक संदेश दिया है। और जैसा कि अभी बड़ा ही एक दिलचस्प चीज आया कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे पेरिस में तो जो उन्होंने वहां भेंट किया मैक्रोन को जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनको उन्होंने जो भेंट किया वो चरक संहिता दिया उन्होंने।
0: चरक संहिता
1: देखिए तो आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा एक हमारे देश का उदाहरण है। तो पूरे देश में किस तरीके से ग्लोबल एम्बेसडर की तरह प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे काफी कार्य किया है और उसी को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य भी आप चाहे महाराष्ट्र की बात करें, त्र्यंबकेश्वर कॉरिडोर की हम बात करें, यूपी में संभल कॉरिडोर है, तिरुपति तो अपना चल ही रहा है काफी समय से और रामायण सर्किट की हम बात करें तो पूरे तरीके से इस पे कार्य किए जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है भारत की जो आर्थिक थोड़ी बहुत समस्याएं चाहे रोजगार की उसको भी हल करने में काफी लाभदायक साबित हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है मैं बोलूंगा। और एक जो आयुर्वेदा है, वेलनेस है, टेंपल इकोनॉमी है, सारी चीजें से जुड़े हुए हैं और छोटे व्यवसाय भी जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप योगा मैट्स बनाने की बात करें, साउंड हीलिंग बॉल्स बनाने की बात करें, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको होम स्टे के लिए जो है लोन प्रदान किया जा रहा है एमएस जो मुद्रा लोन के माध्यम से
0: जी, जी।
1: तो सरकार ने इसमें काफी अच्छी नीतियां ही बनाई हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई हैं कि कैसे उनके स्तर पर जाकर उनकी मदद की जाए। उत्तराखंड में सब्सिडी दी जा रही है कि आप योगा सेंटर बनाएं, स्पिरिचुअल ट्रीट्स बनाएं। तो इस तरीके से लोगों को इस पे काफी लोगों को इसमें प्रेरणा मिली है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से सकारात्मक हमें एक संदेश जा रहा है। और ये हम लीजिए लगता है कि भारत फिर से जो एक वापस से वो जो भारत है जो हमारी सोने की चिड़िया है उसकी तरफ रुक कर गया है और मुझे उम्मीद है ये बहुत ही अच्छा एक अर्थशास्त्र की अगर मैं शब्द में बोलें तो बहुत अच्छा इसका लाभदायक हमें देखने को मिलेगा
0: जी। अगला प्रश्न मेरा आस्था भी और विकास भी इसी से जुड़ा होगा, लेकिन उससे पहले हमारे श्रोता जो इस वक्त हमसे जुड़े हैं उन्हें भी हम बता दें कि आपके भी यदि कोई प्रश्न है तो आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं आप हमें। नंबर नोट करें 9868107070 9868107070 और जो लैंडलाइन नंबर है वो है 0112342101083। इन नंबर्स पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। फिलहाल एक और गीत आप सभी के दिलों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि दिल से दिल तक का ये सफर है और बात चल रही है स्पिरिचुअल इकोनॉमी की।

0: राकेश जी, आस्था भी और विकास भी, ये जैसा कि आपने बताया और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी यही जो है कोशिश रही है, आम आदमी के जीवन पर इसका प्रभाव अगर हम स्पिरिचुअल इकोनॉमी के संदर्भ में देखें तो क्या प्रभाव है आम आदमी के जीवन पर, छोटे व्यवसायियों के जीवन पर किस तरह से इसने असर डाला है?
1: देखिए, जो आम आदमी है उसके जीवन पे जब से ये श्रृंखला शुरू हुई है स्पिरिचुअल इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था हम देखते हैं कि जो हमारे छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं
0: जी,
1: उन्होंने चाहे वो होम स्टे के माध्यम से हो, चाहे आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में जो हैंडीक्राफ्ट्स है उस पर कार्य करने की दिशा में हो, एमएसएमई से जो लोन मुहैया कराई गई है उस पर कार्य करने की दिशा में हो, जैसा कि हमने देखा कि अयोध्या में जिस तरीके से पूजनीय श्री राम जन्मभूमि का जो कार्य हुआ है और राम मंदिर का जो वहाँ पर अपने देखते हैं कि जो भव्य जो वहाँ पर आयोजन हुआ
0: जी,
1: तो उसमें भी हमने देखा कि जो लोग उससे जुड़े काफ़ी वहाँ के जो लोकल इकॉनमी को काफ़ी बूस्ट मिला है। लोकल इकॉनमी जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, और आपको मैं बहुत एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आपने देखा या प्रयागराज का जो महाकुंभ मेला है उसमें से कई ऐसे न्यूज़ आ रहे थे कि जो नाव चलाने वाले लोग हैं और कार्यक्रम उन्हें काफ़ी एक अच्छे अमाउंट पर पैसे कभी आमदनी की है, कुछ लोगों तो करोड़ों में भी ऐसे आए कि उन्होंने अपने आमदनी की है। तो मुझे लगता है कि लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में, चाहे प्रयागराज का महाकुंभ मेला की बात करें या अयोध्या की हमने बात की है राम जन्मभूमि से, वहाँ के जो लोकल जो लोग रहने वाले हैं उनके व्यवसाय में काफ़ी वृद्धि हुई है, हमें उसको देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, देखिए जो अभी तक अर्थशास्त्र का जो नियम कहता गया है कि हम कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें, तो हम कहीं ना कहीं उसका जो उपाय है इकोनॉमी के प्रिंसिपल से ढूंढते हैं, अर्थव्यवस्था के दांव पे से ढूंढते हैं, मगर भारत का जो एक आध्यात्मिक केंद्र रहा है, जो आध्यात्मिक एक झुकाव रहा है, उसने हमेशा ही कहा है कि अर्थशास्त्र के जो जो समस्याएं हैं दुनिया में आज जो भी आप देखिए, चाहे वो गरीबी है या असमानताएं देखते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका जो एकमात्र जो राम बाण है जिससे उसको ठीक किया जा सकता है वो आध्यात्मिक ही, जिसको भारत ने ही दिया है, बहुत पहले भारत ने ही दिया है। क्योंकि आप बात कीजिए, चाहे पतंजलि योग सिद्ध की बात कीजिए जहाँ शुरुआत ही होती है अथ योग अनुशासनम, तो एक आप सामान्य छात्र के जीवन में भी देखें एक बड़ा संदेश जाता है कि अगर आप एक अनुशासित जिंदगी जीते हैं तो अनुशासित छात्र हो जाएंगे, अनुशासित शिक्षक हो जाएंगे, अनुशासित लोग हो जाएंगे, तो अनुशासित समाज भी हो जाएगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो आप देखें इसमें इतना बड़ा जो संदेश है वो हमारे जो पुस्तकें हैं, हमारे जो उपनिषद है, वेद हैं, जो भी हमारे धार्मिक पुस्तक है उसमें दिया रखा है। और चाहे वो हम सिखिज्म की बात करें, सिख सर्किट्स की भी बात करें, वहाँ पे भी ये संदेश है। बुद्धिस्ट सर्किट में भी आप देखिए उसमें भी यही संदेश है, किस तरीके से बुद्ध की जो रिलिक्स हैं वो चारों दिशाओं में ले गई थी। और इसलिए भारत में कहा गया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम ट्रैवल करते हैं, हम तीर्थ स्थल पर जाते हैं, क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु की बात करें वो भी हर भारत की दिशा में जाकर के हरे रामा हरे कृष्णा का उन्हें संदेश दिया। चाहे हम शंकराचार्य जी की बात करें वो भी केरल से निकले और हिमालय तक गए और जो है आप देखते हैं पीठ की स्थापना की। तो ये तो एक सनातन के मूल निवास में है कि किस तरीके से हम भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करते हैं और समाज को ही देते हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो हमारे बहुत मूल जो कुछ बातें हैं जो सनातन में है, चाहे वो लोभ हो या क्रोध हो, उसको कैसे हम देख सकते हैं, तो ये उसके बाद ऑटोमेटिकली जो जो इकोनॉमिक्स की जो अर्थव्यवस्था की समस्याएं ठीक हो जाएंगी अगर सभी कल्याणकारी हो जाएंगे, सभी के मस्तिष्क शांत हो जाएंगे और वो दूसरे के कल्याण में ही अपना कल्याण सोचें। जैसे आप देखिए ना, अतिथि देवो भव, अभी अतिथि देवो भव तो आप घर घर में है, हम ये नहीं सोचते कोई आता है तो कि हम उन्हें उनके लिए चार्ज करें, ये हमारे गुण में है, हमारे एक सदियों से परंपरा
0: मूल स्वभाव में है,
1: मूल स्वभाव में है। तो इस तरीके की जो भावना है, चाहे वो अगर अधिकारी हो या शिक्षक हो या छात्र हो, सबकी भावना अगर वो है तो मूल संदेश तो अपने धार्मिक पुस्तकों से ही आ रही है। तो ऑटोमेटिकली ये जो इतनी भी समस्याएं हैं जो इकोनॉमिक्स की, जो हम इसका जो वेस्ट की तरीके से, जो पाश्चात्य तरीके से उसका हल देखने को इस करते हैं, मुझे लगता है वो समय आ गया है कि जो वेस्ट भी इस बात को समझता है और जिस तरीके से भारत की तरफ वो बढ़ रहे हैं और आ रहे हैं शांति के लिए। आपको मैं बहुत ही बात बताना चाहूंगा कि जिस तरीके की सुपर एंग्जाइटी पे वेस्ट गई हुई है और वहाँ के युवा गई हुए हैं, आप देखिए कितना उनका मानसिक स्तर पर उनका दिक्कतें हो रही है, अब वो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि भारत में जानते हैं वो कि भारत ही उनको अंतर्मुखी बनाएगा, और बहिर्मुखी होने से वो समस्याओं का हल नहीं है। तो ये जो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी जाने का जो संदेश है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक हमारी अर्थव्यवस्था ही देती है, आध्यात्मिक केंद्र ही देती है। और ठीक है, उसका साथ साथ अगर कुछ व्यवसाय को भी उसका लाभ मिल जाता है अच्छे से कार्य करके, तो उसमें कोई गलत नहीं है। और उसमें हम देखते हैं कि जो एस्टिमेशन है 2035 तक 440 बिलियन डॉलर के आसपास है, अभी
0: जी
1: ऑलरेडी 220 बिलियन डॉलर के आसपास है। हम 2014 में 8वीं विश्व की सबसे बड़ी टूरिज्म में मार्केट में हम सबसे ऊपर थे, आज बढ़ करके हम 8वीं नंबर पे आ गए, 10वीं से 8वीं है। तो निरंतर हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऊंचे स्तर पर ले जा रहा है, और आने वाले समय में बहुत स्कोप है। जिस तरीके से युवाओं में इसका आप देखिए, आप हिमालय की तरफ जाए, पहाड़ पर जाए, युवाओं में जो इसके प्रति एक मोटिवेशन जागा है कि वो भी इससे जुड़ना चाहते हैं,
0: जी जी
1: प्राणायाम से, योग के माध्यम से जुड़ करके अपने आप को एक दिशा में कंट्रीब्यूट करें, योगदान दे रहे हैं देश के लिए, और भजन हो या कीर्तन हो उसमें भी योगदान है। और ये बहुत अच्छी स्टडी भी कहती है कि आप अगर अगर आध्यात्मिक पुस्तकें भी सुनते हैं तो उससे भी डिस्कोर्सेस से आपके मानसिक जो है आपको शांति मिलती है। तो इसी का ये अनुरूप आप देखते हैं कि ये सारा देखने को हमें मिल रहा है।
0: मिल रहा है, और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, भारत की ओर देख रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, उसके बाद इस पर हम बात करेंगे। आप हमें संदेश भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। संदेश भेजने के लिए नंबर है 9868107070। स्पिरिचुअल इकोनॉमी पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह के साथ।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
7: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
8: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
9: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
10: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों की डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
9: हाँ सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
10: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
9: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
11: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
12: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
13: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, जो पहुंचता है दिल से दिल तक। और दिल से दिल तक के इस सफर पर आपके साथ इस वक्त मैं हूं सत्य, और साथ है हमारे खास मेहमान डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं स्पिरिचुअल इकोनॉमी, उसके विकास, उसके क्रम, उसके स्वरूप के बारे में। डॉक्टर राकेश, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर योगदान की बात की जाए, ग्लोबली इम्पैक्ट की अगर बात की जाए, तो स्पिरिचुअल इकोनॉमी का क्या योगदान है उसमें, और भारतीय जो पर्यटन है उस क्षेत्र को कैसे बढ़ावा मिला है?
14: जी देखिए, अगर हम आर्थिक आंकड़े की बात करें तो $220 बिलियन के आसपास अभी हमारा इस पर लगभग योगदान है, अगर हम GDP में बात करें। और ऐसी KPMG की और काफ़ी रिपोर्ट्स कहती हैं जो संस्थाएं की, ये बढ़ करके हमारे 2035 तक ये 440 बिलियन डॉलर के आसपास होने के अनुमान है। अगर अभी गत वर्ष की चीज़ों को देख लें, अब समय को देखें, हम अयोध्या की बात कर लें जहाँ पर ये ट्रैवल्स हुए, जो पर्यटक आए, आप देखिए धार्मिक जो श्रद्धालु आए, तो तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का एस्टिमेशन है
13: जी।
14: आप सिर्फ अयोध्या की बात करें तो उसका जो योगदान है यूपी के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो 1.5% का अभी है, बट आने वाले समय में बताया गया NSSO की रिपोर्ट एक 18,000 करोड़ रुपये के आसपास उसकी हम बताते रेवेन्यू है
13: जी।
14: तो मैंने जैसा आपको बताया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की बात करें, तो वैश्विक स्तर पर अगर हम इसे देखें तो ये भारत का एक आने वाले समय में बहुत बड़ा एक सेक्टर हो सकता है, और है भी, जिस पे ये काम चल रहा है। अभी हमने देखा है कि किस तरीके से विदेशी जो पर्यटक आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, चाहे वो हम तमिलनाडु राज्य की बात करें जी, कोयम्बटूर की बात करें, जो हमारे आते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में कार्यक्रम में आते हैं जो समझने के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो उसमें काफी तेजी से रफ्तार से वृद्धि हुई है। तो प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक हमारा जो संकल्पना है जो हम देख रहे हैं, वो स्पिरिचुअल में भी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और ऑलरेडी हम हैं उस पर, और उस पर कार्य हो रहा है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कैपेक्स, जिसको आप बोलते हैं कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजी जो अपने निर्माण करते हैं, जो उसमें कार्य करते हैं, उस पर काफ़ी कार्य किए गए हैं। तो कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए, बुद्धिस्ट सर्किट के डेवलपमेंट के लिए, जो रोड्स हैं और इनलैंड सिस्टम है उसको काफ़ी डेवलप किया गया है। अयोध्या में जो है रोड वाइडनिंग की काम की जाए उस पर भी कार्य किया गया है। तो ये जो है इसका हमें देखने को एक मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है। देखिए, एक बात हमें समझना पड़ेगा कि ये जो विदेश के लोग हैं अभी जो समस्याएं, जैसे मैंने आपको बताया जिस तरीके की मेंटल अनवेलनेस से गुजर रहे हैं, जो समस्याएं हैं, जो विज्ञान के चरम पे हम उसे बोलते हैं, तो उसका उन्होंने जान लिया है, उस बात को जान गए हैं कि उसका समाधान से भारत में ही मिल सकता है। और इसलिए वो भारत में, चाहे वो आपके जग्गी वासुदेव के ईशा योगा सेंटर की हम बात करें या आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें
13: जी, जी।
14: या हमारे पवित्र धाम श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या में आकर के हमने देखा किस तरीके से जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो विदेश में थे, 50 करोड़ के आसपास, 60 करोड़ के आसपास लोग तादाद में लोग आए और महाकुंभ मेले में और इसमें, क्योंकि वो इस बात को अब जान गए हैं कि जो शांति है वो शांति बहिर्मुखी नहीं हो सकती, अंदरमुखी हो सकती है। एक माध्यमिक जो है उसमें बना के रखने की बहुत ही आवश्यकता है। तो इसका हम देखते हैं कि चाहे फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, जो आपके देश को मिलती है उससे, जो विदेशी पर्यटक आते हैं, उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम हुए हैं। वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधाएँ दी गई हैं और उस पर अग्रसर होकर कार्य किया है, जिससे हमने देखा है कि बहुत सारे पर्यटक जो हैं उस पर आते हैं और अलग अलग, चाहे वो कला से संबंधित है, हेरिटेज संबंधित है और जो म्यूजियम है उससे संबंधित, उसको भी हमने देखा और भ्रमण करके उसको जानने की कोशिश की। तो वैश भारत का ये जो क्षेत्र है, स्पिरिचुअल इकोनॉमी का क्षेत्र है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लगता है और हम देख भी रहे हैं कि ये एक सारे समस्याओं को, बहुत सारी समस्याओं को, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उस पर भी कार्य कर रहा है। आप देखिए ना, एक आप सर्टिफिकेट लेकर के कार्य करके योगा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का आप सीख करके आप सिखा सकते हैं योगा, आप अलायंस के योगा सर्टिफिकेट, आप भारत का अपना योगा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के आप करके सिखा सकते हैं आप योगा, आप आयुर्वेदा का पंचकर्मा कोर्स करके आप आयुर्वेदा के ज्ञान दे सकते हैं, आप लोगों को उसके हल कर सकते हैं। और एम्स की तो स्टडी भी है कि किस तरीके से कैंसर की भी समस्याओं को भी ठीक करने में काफ़ी लाभदायक रहा है। तो इतनी बड़ी उपलब्धियाँ जब भारत के अपने कोश में है, अपने सांस्कृतिक कोश में है, तो ये ग्लोबल भी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बहुत कंट्रीब्यूटर है और उसमें भारतीय व्यवस्था को आगे ले जाने में काफी लाभदायक हो रहा है
13: जी। और वैश्विक स्तर पर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा वो वहीं का हो गया, उसी का हो गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे। हमारे पास एक सवाल भी आया है राकेश जी, ये सवाल हमारे पास आसाम से है, इसका उत्तर हम देंगे इस गीत के बाद, लेकिन सवाल मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इन्होंने स्पिरिचुअल इकोनॉमी के बारे में पूछा कि बेसिकली क्या है, उसका उत्तर हमने शुरुआत में दिया, लेकिन ये पूछना ये भी चाहते हैं कि किस तरह से ये न्यू इंजन है फॉर डेवलपमेंट, जो है भारत के डेवलपमेंट के लिए न्यू इंजन कैसे है। परंपरा तो बहुत पुरानी है, शायद ये पूछना चाहते हैं, तो इसका उत्तर हम देंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक गीत सुनवाते हैं, आप साथ साथ गुनगुनाइए और यूं ही आगे बढ़ते रहें हम विश्व स्तर पर, दुनिया की नजरों में आगे और आगे।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: हे, डिड यू नो, ओवर द पास्ट 12 इयर्स अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इंडियाज़ डिफेंस सेक्टर हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रॉम बूस्टिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिफेंस विद कॉन्फिडेंस।
7: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
6: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
7: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
6: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
8: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
0: Ye hai Akashvani aur aap sun rahe hain FM Rainbow.
9: आकाशवाणी रेनबो पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन। विषय है स्पिरिचुअल इकोनॉमी, अ न्यू इंजन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। मेहमान के तौर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह। और राकेश जी, हितेंद्र दास जी का आसाम से जो प्रश्न है उसका उत्तर हम जरूर देना चाहेंगे कि किस तरह से ये न्यू इंजन है भारत के विकास का।
10: हितेंद्र दास जी ने बहुत ही बुनियादी प्रश्न पूछा है। अगर हम बात करें 2014 से पहले की, तो उस तरीके की स्कीम्स नहीं हुआ करती। जैसे अभी हम बात करें प्रसाद स्कीम की, बात करें स्वदेश दर्शन स्कीम्स की, बात करें, ऐसे स्कीम्स एग्जिस्ट ही नहीं किया करते धरातल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नेतृत्व में ऐसे स्कीम्स बनाए गए जहां पर इस तरीके के दर्शन संबंधित और स्पिरिचुअल टूरिज्म को ऑगमेंट करने के लिए उसके लिए आवंटित किए गए बजट में भी। उसी का हम नतीजा देखते हैं कि आने वाले समय में उसके बाद किस तरीके से जो MSME में जो पैसे दिए गए हैं होम स्टे के लिए और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, उसका ही हम देखते हैं परिणाम देखने को मिलता है
9: जी।
10: साथ ही साथ अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, जो यूपी में कार्य हुआ है, जो डबल इंजन की सरकार में, वहां पर आप देखें तो वहां पर भी महाकुंभ का जो आयोजन हुआ या अयोध्या राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ, ये इसी 9 और 12 सालों में आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए ये जो कार्य है वो बाद में उसको अच्छी पद्धति से की गई और उसी का नतीजा हमें देखते हैं कि धार्मिक जो हमारे पर्यटक हैं उसकी जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है। साथ ही साथ हमने देखा जो एक संदेश किया विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का
9: जी।
10: आप देखिए ना, जिस तरीके से जो एक संदेश किया है जो पहले भी था मगर उसको पुनर्जीवित किया गया, जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स कहते हैं, कैसे हमने डीकोलोनाइज किया माइंड को, यूथ इसके तरफ अग्रसर हो रहा है, मैंने आपको बताया। तो ये सारी कहीं ना कहीं जब वातावरण बदलते हैं, जब एक पूरी सिस्टम बदलता है, प्रणाली बदलती है आने के बाद, मैंने देखा है उसी का नतीजा देखने को मिलता है कि आपके ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि 2 लाख करोड़ के आसपास जो स्पिरिचुअल इकोनॉमी से जो ग्रोथ हुई है, अयोध्या से जैसे मैंने बताया कि 18,000 करोड़ का NSSO का डेटा है सिर्फ, उस पर आप इकोनॉमी में ग्रोथ का देखते हैं तो, और जैसा कि वो आसाम से हैं, कामाख्या मंदिर में भी जिस तरीके की वहाँ पे विकास किए गए आप देखने को मिल रहा है। तो ये जो एक संदेश किया है ग्लोबल डायस्पोरा में, इसी का नतीजा है कि हम देखते हैं कि इसमें वृद्धि मिलती है। तो डिफरेंट कॉरिडोर्स बनाए, जैसे मैंने बताया बुद्धिस्ट कॉरिडोर हुआ, राम जन्मभूमि की आपकी बात की हमने, बाकी बिहारी कॉरिडोर की हमने बात की, आप जगन्नाथ कॉरिडोर की बात कीजिए, महाकाल कॉरिडोर की बात कीजिए, उज्जैन की बात की। तो ये हमें देखता है कि इसी 12 वर्षों में और प्रदेश में 9 वर्षों में देखा गया। इसलिए ये न्यू इंजन इसलिए है क्योंकि उसके बाद नीतियाँ वैसी पॉलिसी बनाई गए लोगों को ध्यान में रखते हुए और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, और सबसे बड़ी बात है हमारी जो विश्वगुरु की जो एक शुरू से रहा है उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र बना करके हमने उस पर कार्य किया। और सबसे बड़ी बात है उसको केंद्र बना करके, केंद्र बिंदु बना के जो सरकार ने कार्य किया, इसलिए न्यू इंजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
9: वसुधैव कुटुंबकम की आपने बात की राकेश जी, और ग्लोबलाइजेशन जो है वैश्वीकरण की अवधारणा भले ही नई हो लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है, अवधारणा है, बहुत पुरानी है। और हमारी जो है ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा में सिर्फ इंसान, अर्थव्यवस्था और यही नहीं, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत सब शामिल रहे और एक जो है समग्र विकास की जो है हम बात करते रहे। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे पास और है, किशनगंज से पैंथर तोमर जी लिख रहे हैं कि जेन जी और अल्फा जो नई पीढ़ी है, जेन जी और अल्फा जो है, इस पीढ़ी को आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था के विचार की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का बदलाव हो सकता है या होना चाहिए?
10: जी जी, देखिए मैं बात करूं तो ऑलरेडी दिल्ली विश्वविद्यालय में इसके लिए काफ़ी कोर्सेज बनाए गए हैं
9: जी।
10: दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने देखा है कि आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी
9: जी,
10: और इस तरीके की जो है कोर्सेज

0: तो उस तरीके से उसको देखा जा रहा है, और उस पर पूरी तरीके से नई जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नई शिक्षा नीति हम देखते हैं उस पर उसे कार्य किया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें किया जा रहा है जो हम देखते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि योग से भी आप जुड़ करके, जैसे मैंने बताया कि योगा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और ये MSME के द्वारा भी चलाई जाती है, उससे जोड़ करके भी हम उसको देख सकते हैं, योग प्राणायाम सीख कर भी या व्यक्तिगत जीवन में उसको उसका लाभ उठा सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने कार्य को देख सकते हैं।
1: बहुत कम वक्त हमारे पास बचा है इस कार्यक्रम का, 3 मिनट शेष हैं, एक और गीत हम सुनवाना चाहेंगे। एक छोटा सा प्रश्न, सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देखते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल इकोनॉमी की बात करें तो इस क्षेत्र में क्या चुनौती है हमारे सामने?
0: देखिए, मुझे लगता है कि गत 12 वर्ष में तो काफ़ी कार्य की गई है। अगर मैं मेरी तरफ से अगर एक दो अगर आप कहें तो मुझे लगता है कि इस पे जो हम, मुझे लगता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो काम कर रहे हैं, सरकार तो काम कर ही रही है मगर एक जो प्राइवेट निजी क्षेत्र है वो भी इस पे कार्य कर रही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से इस पे काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र का भी अगर झुकाव ज़्यादा हो जाए और योगदान हो, चाहे वो उनके हमारे जो आध्यात्मिक केंद्र से संबंधित अगर स्कूल्स बनाए जाएं, उसमें भगवद गीता पाठ्यक्रम को डाला जाए और कार्यक्रम को देखा जाए, तो मुझे लगता है कि वो भी अगर साथ साथ बढ़े तो भारत बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है हमें लगता है। और सबका साथ सबका विकास जो है का जो मूल मंत्र है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, उसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर रहे हैं। जी,
1: बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी आज कार्यक्रम में मिली होगी हमारे श्रोताओं को भी, मुझे भी बहुत अच्छी जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वक्त अब जो है बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, स्पिरिचुअल इकोनॉमी पर जो है बात की डॉक्टर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र विभाग में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब सत्य को भी दीजिए अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक अपना प्यार अपना स्नेह मुझ पर यूं ही बनाए रखिए।

रेनबो और अब शुरू हो चुका है प्रोग्राम आशियाना। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जिससे आप सभी लोग अपने घर में रूबरू होते होंगे। भाई, जब घर में एक मेंबर तो हेल्थ और फिटनेस को लेकर बेहद सजग हो, फिटनेस फ्रीक हो, जबकि दूसरा पिज्जा, बर्गर और चाट पकौड़ी का दीवाना हो, तो भाई तालमेल कैसे बनाया जाए। और मुझे लगता है कि आज के दौर में ये समस्या हर घर परिवार में देखने को मिलती है। लेकिन स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना ही होता है, क्योंकि सेहत की अनदेखी ना हो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे बने संतुलन और कैसे इस बैलेंस को बनाए रखा जाए, क्या है स्मार्ट तरीका, इस पर होगी बात आज के अपने आकाशवाणी रेनबो के खास शो आशियाना में।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा आकाशवाणी।

0: दोस्तों, वैसे आपके घर में भी कभी ऐसा होता है क्या? एक व्यक्ति तो बोले कि इतनी कैलोरीज मत खाओ, जबकि दूसरे का ये जवाब होता है कि भाई जिंदगी का मजा भी तो जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि फिटनेस का मतलब सिर्फ डाइटिंग नहीं होता है, बल्कि खुश रहना भी बेहद ज़रूरी है। और किसी को ये खुशी अगर खाने में मिलती है तो क्या हर्ज है। लेकिन फिर भी हम बस यही कहेंगे कि अगर परिवार में कोई फिटनेस फ्रीक है तो वो दूसरों को प्रेरित तो करे, लेकिन दबाव ना बनाए। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी अच्छी आदत को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है कि वो आवाज़ हमारे अंदर से आए। क्योंकि किसी के दबाव में आप अच्छी आदतों को स्वीकार करें और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जंक फूड पसंद करने वालों को भी थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है, और जो फिटनेस फ्रीक हैं उन्हें अपने घर के बाकी लोगों को प्रेशराइज नहीं करना है।
1: बन मेरी महबूबा, मैं तेनु ताज पवा दूंगा।
0: थोड़ा प्यार से हैंडल करेंगे तो अच्छी आदतें परिवार के दूसरे लोगों में भी डाली जा सकती है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
2: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों की डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
1: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
2: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
1: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
7: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
8: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना और हम बात कर रहे हैं एक हेल्दी फैमिली की। दोस्तों, हेल्दी फैमिली वही है जहां पर ना तो स्वाद पूरी तरह छूटे और ना ही अनदेखी हो सेहत की। तो इसीलिए ज़रूरत है बैलेंस की। कभी कभार मनपसंद जंक फूड और रोज़मर्रा में हो पौष्टिक भोजन, यही है स्मार्ट तरीका। और दोस्तों, इस स्मार्ट तरीके को फॉलो करने के लिए आपको अपनी फैमिली के साथ करनी होगी मॉर्निंग वॉक, रोजाना योग या फिर साइकिलिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि फिटनेस ना एक बोझ ना बने बल्कि एक मज़ेदार एक्टिविटी बन जाए, जिससे कभी कभी आपको मौका भी मिल जाएगा कि वीकेंड पर अपनी पसंदीदा चाट या फिर आइसक्रीम भी अपनी फैमिली के साथ में खा सकें, क्योंकि रिश्तों की जो मिठास होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ज़रूरी है शरीर की फिटनेस।

एक बार ठान लेना तो कोई भी टारगेट मुश्किल नहीं होता, इसीलिए एक बार ठान लेंगे तो आप भी फतेह कर पाएंगे और फिटनेस आपकी होगी तंदुरुस्त।

0: दोस्तों, ये फिटनेस का जो फंडा है ना, वो आप अपने घर में भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार जो घर में फिटनेस फ्रीक मेंबर होते हैं, वो तो ये कहते हैं कि घर में बाहर का खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद किया जाता है, हमें घर का ही खाना खाना चाहिए। जबकि जंक फूड लवर का ये तर्क होता है कि कभी कभी तो चलता है। तो दोस्तों, सबसे आसान उपाय पता है क्या है? मैं आपको दे रही हूँ एक आइडिया कि घर पर ही आप हेल्दी ट्विस्ट के साथ पिज्ज़ा, सैंडविच या फिर चाट को बना सकते हैं, जिससे कि स्वाद भी बरकरार रहे और साथ ही साथ सेहत भी। तो फिलहाल प्रोग्राम आशियाना में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
8: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
7: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
8: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
7: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों, फिल्मों में हीरो या हीरोइन को देखकर बच्चे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो होते हैं और चाहते हैं कि वो उनकी जैसे आकर्षक दिखें। तो आप इस बात को यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, जिससे कि वो अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक हों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो भी अपनी फिटनेस का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। तो यही बात आप अपने बच्चों को बता सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भी अपने संतुलित खान पान के प्रति जागरूक हों। और साथ ही साथ आपको भी ध्यान रखना होगा अपना भी, क्योंकि अगर आप सलाद नहीं जब जंक की तरफ मुड़ेंगे तो बच्चे भी कहीं ना कहीं आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही वो सीखते हैं। तो इसी नोट पर लूंगी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों भले ही आप देसी गर्ल बनना चाहें, लेकिन फिटनेस का मतलब केवल पतला दिखना या सिक्स पैक बनाना नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत होना भी जरूरी है। और अच्छी सेहत में जरूरी है मानसिक शांति, खुशहाल रिश्ते और परिवार के साथ बिताया गया समय। अगर खाने की पसंद को लेकर घर में बहस होने लगे तो एक बात याद रखिए, एक दूसरे को बदलने से बेहतर है एक दूसरे को समझना। आखिर परिवार में सबसे जरूरी है प्यार और अपनापन।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना।
2: FM Dragoban 103 MHz, News, Music and Entertainment. FM 103 MHz.
3: This is Agashwani Kohima, the news headlines. Nagaland Governor Nandkishore Yadav describes education as most powerful instrument of transformation, underscored its critical role in India's journey towards vision of Viksit Bharat 2047. Advisor Victor Shohi inaugurates newly constructed building of government primary school at Telodzu village, emphasizes importance of quality education in shaping the future of children. Second batch of census 2027 for enumerators and supervisors for Zanipoto district commences with 50 participants from sadar areas. Centre approves continuation of central sector scheme designing innovative solutions for holistic access to justice, restructured as Disha 2.0 for 5 years. Union Minister Bandi Sanjay Kumar highlights critical role of Central Industrial Security Force in national development, says CISF personnel act as country's economic soldiers securing nation's growth. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss rapidly evolving nature of national security threats and role of new technologies in emerging security risk. National Testing Agency refutes claims of video circulating on social media that NEET UG 2026 re-examination question paper was leaked on Telegram before examination. Union Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia for official 2-day visit to meet Mongolian leadership and hold discussions with their counterpart, Foreign Minister B. Batsegsek. United Kingdom Prime Minister Keir Starmer resigns as Prime Minister and leader of Labour Party, ending his tenure at Downing Street

0: choreography training program aimed at equipping students with practical skills in visual storytelling and digital media production. In the FIFA World Cup 2026, Argentina to take on Austria in Group J at 10:30 p.m. Indian Standard Time. And in men's hockey, India defeats Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg. That is all we have in this news headlines.
1: FM Dragoban. News, music and entertainment. This is FM Dragoban. FM 103 megahertz.
0: हाँ जी बेल लिसनर्स जैसे मैं डेसी एट रियल टाइम भी कोई मैं ट्रैफिक लगे जानकारी आया कोई दिया से नॉर्थ बाउंड टू लिन नॉर्थ फिनी जला ट्रैफिक डायरेक्शन से हेडेड टुवर्ड्स बीयूस हाई स्कूल एरिया और साउथ बाउंड टू लिडो साउथ फिनी आहे लगा ट्रैफिक डायरेक्शन हेडेड टुवर्ड्स बीयूसी एंड न्यू मिनिस्टर्स हिल तो मोंखला और पीएचक्यू जंक्शन मजदे आसे कोले नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड टू द डायरेक्शन टू बी ट्रैफिक टू मॉडरेट आसे यानी ट्रैफिक टू मन कम टू बी नय और मन बिशी बी नय एकटा हिसाब ते आसे और अलग रास्ता लो कोले दो ओल्ड मिनिस्टर्स हिल टू जेल कॉलोनी टू रास्ता लो पारिबो पीएचक्यू जंक्शन और मेजर जंक्शन मजदे आसे कोले नॉर्थ बाउंड डायरेक्शन टू ट्रैफिक टू मॉडरेट आसे और साउथ बाउंड डायरेक्शन टू ट्रैफिक टू हेवी आसे अलग रास्ता लो कोले दो बारा मेडिकल टू टी मॉडल टू आईजी Noliba Ladies Mile Road, ito rastahan loo paribo. TCB or Razu Point, majude ase gole. Northbound, ito la direction di traffic to moderate ase. Southbound la direction di traffic to heavy ase. Ago, dusra rastahan loo paribo. TCB to Razu Point. Noliba Box Cutting to NHK to Census Point. Noliba Pulbari to Kochuzi Crown to Razu Point. Razu Point or Census Point, majude ase gole. Northbound la direction di traffic to light ase. আৰু চাউথ বাউণ্ড ডাইৰেকশ্যন দি ট্ৰাফিকটো হেভি আছে আগৰ দুচৰ ৰাস্তা ল'ব পাৰিব চেঞ্চেছ পইণ্ট টু এন এইচ এ কে হাইস্কুল জাংচন আৰু চেঞ্চেছ পইণ্ট মাজতে আছে গ'লে নৰ্থ বাউণ্ড আৰু চাউথ বাউণ্ড টিবি ট্ৰাফিকটো লাইটে আছে আৰু এইটো নিচিনা এন এইচ এ কে জাংচন আৰু চেঞ্চেছ পইণ্ট মাজতে বি নৰ্থ বাউণ্ড আৰু চাউথ বাউণ্ড টিবি ট্ৰাফিকটো লাইটে আছে আমি আনি এতিয়া শুনিলে ৰিয়েল টাইম দি কৈ আমাৰ ট্ৰাফিক লাগে জানকাৰী আৰু এতিয়া আগে বঢ়াই না প্ৰগ্ৰাম আনি দিবলৈ আছে লোকেল আৰ্টিষ্ট

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: FM 드래곤밴 News, Music and Entertainment FM 103 MHz
1: 한지 밸런스는 소녀세 합니다. 나가시원 FM 드래그밴 103MHz 에리아스 원에디아스 에리얼 타임 리코이마 트라픽 러가 잔거리 구디아스 노드바운드 콜리도 이도 노드피니 자라가 트라픽 디렉션 아세 헤드 투어스 하이스쿨 에리아 아로 사우드바운드 올레 사우드피니 자라가 트라픽 디렉션 헤드 투어스 BUC and New Ministers Hill 몽클라 투 PHQ 정션 마주디아스 골레 노드바운드 디렉션 디 트라픽 투 라이트 디카 아세 아로 사우드바운드 디렉션 디도 트라픽 투 모더레티 아세 Ala Grasa Logoli to Old Minister's Hill to Jail Colony to Rasa Logo Paribo. PHQ Junction or Mezzo Junction Majoria Sigule. Northbound La Direction to Traffic to Light Assay. Holibi Southbound La Direction to Traffic to Heavy Assay. Agudusra Rasa Logo Paribo. Paramedical to T-Model to IG. Noliba Ladies Mile Road. TCP or Razu Point Majoria Sigule. Northbound La Direction to Traffic to Moderate Assay. Aro Southbound La Direction to Traffic to Heavy Dika Assay. अगर दूसरा रास्ता आन लोगों को ले तो टीसीपी टू राजू पॉइंट नॉलेबा बॉक्स करिंग टू एनएचए के टू सेंसस पॉइंट नॉलेबा बुलबारी टू कोचुजी ग्राउंड टू राजू पॉइंट इधर रास्ता का आन लोगों पारिबो राजू पॉइंट और सेंसस पॉइंट मजोदियासी को ले नॉर्थ बाउंड डायरेक्शन जो ट्रैफिक टू लाइट असे और साउथ बाउंड डायरेक्शन जो ट्रैफिक टू हैवी दिखा असे अगर दूसरा रास्ता लोगों को ले तो सेंसस पॉइंट टू एनएचए के इधर रास्ता लोगों पारिबो High School Junction or Census Point majodia sigole northbound la direction de traffic to light ase aro southbound la direction de traffic to moderate ase agu dusra rasta han lo bal gole Billy Graham Road to DBS noliba High School Junction to T Model Road edu rasta kan lo paribo NHK Junction to Census Point majodia le northbound la direction aro southbound la direction de traffic to light ase It was a real time day, koima traffic laga jankari apni anidia honile, ago agi paraina program antiula se rural connect.

0: 12,000।
1: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
1: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs 7.49 lakh.
6: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
7: FM Dragoban
8: 103
7: MHz. News, music and entertainment.
8: This is FM Dragoban.
7: FM 103 MHz.
9: Good evening, dear listeners. This is Agash, 1FM Dragoban at 103 MHz. Welcome to our program Kaleidoscope. First up, we have the program Yuva Vani, Skill Up, Been to a Bar, A Chocolate Entrepreneur's Journey. It's an interview with Dr. Rubin Katani, interviewed by Vivut Sonu.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Dragoban 103 MHz News, Music and Entertainment FM 103 MHz।
2: जी हाँ, अपना खन होने से आकाशवाणी FM ट्रैकपन 110 MHz होने ढगा सब बिल्लाक सुप संध्या सलाम और नमस्ते और अपना खन सब के स्वागत करे से लाइव फोन इन प्रोग्राम अपना खन पसंद करा लगा प्रोग्राम। जी हाँ, जुराती अपना खनला दिन से जुड़ी अपना खनला पसंदीदा गीत खान अपना खन होने बोले मन से कोयले मने कॉल करीबी 0370224303 16 नंबर को कोई दिया से 0370224303 6 इतु नंबर दे कॉल करीबी मई लगते बातचीत करी और अपना खान पसंद कराला गीत इते मैं बजाई दिया हम तो मैं अपना खाना कल्स रखी थी सब यू समय एक साथ मिलीगिना शुनब बाईपास रोड फिल्म की गीत गए से जुबिन नौटियाल और सालोनी ठाकुर।

0: ये पुरानी फिल्म है?
1: नहीं
0: उला मैं देखना पड़ेगा। अनारी नया वाला नहीं है मेरे पास।
1: तो पुराने वाले में कौन सा गाना है?
0: पुरानी गीत है बन के पंछी, दिल के नजर से, किसी की मुस्कुराहटों से। 1956 है, सब कुछ सीखा हमने, तेरे जाना दिल का और ये चांद खिला।
1: वो नहीं है, मतलब जो नई वाली है।
0: नहीं
1: फिर ऐसा कोई गाना मतलब दूसरा देश
0: है?
1: जन्मदिन के हिसाब से गाना देखिए, फिर दूसरी फिल्म बताता हूँ।
0: जन्मदिन का अब बताना पड़ेगा, हम लोग तो रोज अलग अलग गीत बजाता है, इसीलिए मन में नहीं होता है।
1: जय श्री शिव राम।
0: हाँ,
1: जय श्री शिव राम फिल्म का नाम
0: नहीं है। वो नहीं है,
1: नहीं है,
0: नहीं
1: है। ये सुना रहे, ये फिल्म दो माली। एक फूल दो मालिक फिल्म का नाम।
0: एक फूल दो मालिक
1: जी।
0: ओके, देखता हूँ।
1: माली,
0: एक फूल दो माली। ओके, एक फूल दो माली है, कौन सा वाला गीत सुनना है?
1: तुझे सूरज कहूँ या चंदा, गीत कहूँ या तारा।
0: ओके, मैं बोल देती हूँ गीत का बोल। औलाद वालो फूलो, चल चल चल चल रे नौजवान, किस्मत की खेल निराले, ओ नन्ही सी फरिश्ते। ये होगा?
1: नन्ही सी फरिश्ते।
0: ओके, ठीक है। और बोले, और कुछ बोलना है आपको?
1: हाँ, मेरे को बोलना है, मेरी पोती का जन्मदिन है, उसका नाम है अतीका, अतीका प्रजापति। और आज मेरा मतलब जन्मदिन के सभी को, जितने भी सुनने वाले लाइव सुन रहे हैं, सभी को उसकी जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। और कुछ मित्रों को याद करता हूँ, सबसे पहले तो आपको।
0: ओके, थैंक यू।
1: भगवान सिंह परमार, पूरन वर्मा जी है, गजराज मोदी जी, केसी सिंह राजपूत है, मांगलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, धर्मवीर है दिल्ली से, लोकन वर्मा उज्जैन से, अशोक जी सुगलुहार विदिशा से, संगीता जी, पूनम जी कानपुर से, पूर्णिमा जी विजयपुरम से, अविनाश जी, राकेश जी शिमला से, बिमल असम से, अमन भस्मकारी गोल्डी, और अमर सिंह साहू भाई को मुंडा, रमेश पात्रे जी।
0: ओके, रमेश जी, उसका नाम है अशिका,
1: अतीका।
0: अतीका, ओके। मेरे तरफ से भी उसका जन्मदिन मुबारक, और बहुत बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं दे रही हूँ। ओके अतीका, थैंक यू रमेश जी, आप कॉल किया, पहले कॉल आपका लग गया है, सुने और एंजॉय कीजिए, और अतीका को भी। ओके, थैंक यू,
1: थैंक यू, धन्यवाद,
0: वेलकम। हुनी रहेगा सब बिलाक प्रोग्राम, सबसे पहला तो हुनी बो एक फूल दो माली फिल्म की गीत, आरो इटु गीत टू পছন্দ করে কিনা অনুরোধ করেছে মধ্যপ্রদেশ রমেশ প্রজাপতি, আর তারপর তার লগা ছুকরি আটিকা লগা জন্মদিন দে তাইকে উইশ করে দি কিনা এই গীতটি পছন্দ করে আছে। তো শুনে থাকা সববিলাকে বি এই গীতটি ডেডিকেট করে দিয়ে আছে, আর এই উপরে আটিকাকে সব মানুষের শুভকামনা দিবলে কারণে মাং বি করে আছে। তো শুনে আসুর হব এক ফুল দো মালি ফিল্ম কি গীত।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, बोले आपका शुभ नाम।
1: शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम। विदिशा
0: ओडिशा से?
1: विदिशा
0: विदिशा, ये कहाँ पे होता है?
1: जी, ये मध्य प्रदेश में है मैम।
0: ओके, मध्य प्रदेश में। लोहट क्या बोला था आपका नाम?
1: शिवा लोहट मैम।
0: शिवा लोहट। ओके, बहुत दिनों के बाद फिर से कॉल किया है, स्वागत है आपको कार्यक्रम
1: जी
0: पे।
1: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: जी बोले, कौन सा गीत सुनना है आज रात?
1: मैम देखिए, जैसे कि हमारे एक निमित सोता है रमेश प्रजापति जी।
0: नहीं, फिल्म का नाम बोल दीजिए पहला।
1: जी, तो मैम फिल्म का नाम रहेगा अनाड़ी।
0: अन्नारी, ये पुरानी वाला है ना?
1: ये जो वो मूवी आई थी ना मैम, अनाड़ी मूवी।
0: ये पुरानी गीत है ना, नया वाला है
1: नहीं मैम, मीडियम है,
0: ये?
1: पुरानी
0: क्योंकि पहला कॉल जो लगवाया था रमेश प्रजापति, उसने भी ये फिल्म ही मांगा था, नहीं है इसलिए नहीं बजा पाया।
1: नहीं। जी, तो
0: तो
1: मैम जानवर मूवी है क्या,
0: जानवर है,
1: तो इसका एक गाना रहेगा मैम, तुझको
0: बोल दीजिए।
1: ना देखो जी घबराता है।
0: ये पुरानी है ना, नया वाला है?
1: ये मैम अक्षय कुमार जी की है।
0: अक्षय कुमार जी का। ओके, कौन सा गीत बोला था फिर से एक बार बता दीजिए।
1: उदित नारायण की आवाज में रहेगा, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है।
0: उदित नारायण जी का आवाज में नहीं है ये जानवर। अंगूरी अंगूरी है, जाने
1: जी
0: वाले है, कसम से है, मौसम है, मेरे मेरा यार दिलदार, मेरे सपनों के राजकुमार, पास बुलाती है और रिश्ता दिलों का। ये
1: ये रिश्ता दिलों का सुना दीजिए मैम। जी
0: रिश्ता दिलों का सुनिधि चौहान का आवाज में है ये।
1: जी जी
0: ओके, और किसी का नाम लेना है आपको?
1: यस मैम, ये गाना डेडिकेट रहेगा रमेश प्रजापति जी की पोती का जन्मदिन है, तो उसी को डेडिकेट रहेगा मैम। और हमारे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी, राकेश जी, भगवान सिंह परमार जी, अभिनाश जी, बदरुआ से रहेंगे पुरुषोत्तम कुमार जी, और हमारे मित्र रहेंगे गजराज लोजी जी, कल्याण सेन जी, और तमाम सुनने वाले और स्पेशली आप।
0: ओके, ठीक है। शिवा लोहट, आपने बहुत दिनों के बाद कॉल किया है, लेकिन बहुत बहुत खेद है कि आपने जो पहली फिल्म मांगा था वो मेरे पास नहीं था। फिर भी जानवर में सुनिधि चौहान का मैं लाइन अप किया है, आप सुनिए और एंजॉय कीजिए। और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। होनी ढगा सब बिलाक प्रोग्राम टी एक बार दूसरा गीत होनी बो सुनिधि चौहान लगा वास्ते फिल्म से जानवर और ये तो गीत तो पसंद करेगी ना। मैं खाल नोटे कॉल करेगी ना, अनुरोध करे से विदिशा मध्य प्रदेश पर शिवा लोहट और तार पर रमेश प्रजापति लगा छुकरी अट्टिका के सबसे पहला डेडिकेट कर दिसे किले कोइले आज तार लगा जन्मदिन आसे और ये ऊपर तार लगा किसान दोस्त खान के डेडिकेट कर शुरू हम जानवर फिल्म की गीत।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, बोलिए, आपका शुभ नाम।
1: मेरा नाम राकेश है और मैं बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओके, राकेश जी बोलिए, कैसे हैं
1: जी? बहुत बढ़िया है, इस वक्त मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और भी अच्छा हो गया।
0: आपने भी कॉल लगाया और मैं भी बहुत खुश हूँ। बोले, कौन सा गीत सुनना है?
1: अगर फिल्म का नाम है, अगर आपके पास वो कच्चे धागे मूवी मिलेंगी तो मैं, पहले आप सर्च कीजिए अगर कच्चे धागे मूवी हो आपके पास।
0: कच्चे धागे शायद नहीं है ना? क्या नहीं है?
1: अच्छा, कच्चे धागे आपके पास नहीं है। ओके, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते, तो मैं फिल्म में फटाफट आपको बता देता हूँ। तो क्या है, दिल का रिश्ता?
0: दिल का रिश्ता है?
1: हाँ जी, हाँ जी। तो
0: दिल का रिश्ता में कौन सा गीत सुनना है?
1: उसमें एक गाना है हाय दिल।
0: ओके, और किसी को डेडिकेट करना है आपको?

0: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा.
1: ओके थैंक यू.
0: पूरन वर्मा, अविनाश तेली और रमेश प्रजापति, अमल भस्माचार्य हैं, विमल भस्माचार्य हैं, रुको मिला मिठा है और भाई कौन मुंडा और रमेश पात्रे हैं, भगवान सिंह परमार हैं और राम नरेश पंजर हैं और तमाम सुनने वाले श्रोता है जिनका भी नाम छूट गया है उनकी देवी गाना डेडिकेट रहेगा और विमल भस्माचार्य और सभी सभी श्रोताओं के साथ मैं ये गाना सुनना चाहता हूँ.
1: ओके ठीक है राकेश जी, आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए और कॉल करने के लिए दिल से शुक्रिया
0: जी. धन्यवाद.
1: वेलकम. শুনি থকা সববিলাক শুনিব দিল কা রিষ্টা ফিল্ম কি গীত গাই আছে কুমার সানু আর আলকা ইয়াগনিক আর কিছুমান কলাকার লগা আওয়াজে. আর এই গীত শুনবলে মন হয়ে গিয়ে পছন্দ করেছে শিমলাপরা রাকেশ আর তারপরে তার লগা এফ এম ট্রেক এপেন লগা কিছু দোস্ত খান কবি ডেডিকেট করে গিয়ে আছে আর শুনি থাকা সববিলাক কবি ডেডিকেট করে দিয়ে গিয়ে আছে. তো একসাথ মিলি কিনা শুনব দিল কা রিষ্টা ফিল্ম কি গীত গাই আছে কুমার সানু আলকা ইয়াগনিক আর খরস.

0: हेलो
1: हेलो
0: कौन कौन से। गुड
1: जी, मैं गुड इवनिंग मैम जी,
0: इवनिंग।
1: मैं ग्राम गुनौरो जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर
0: ओके तनुश्री बोले, आज कौन सा गीत सुनना है आपको। थानेदार,
1: जी मैम, फिल्म का नाम है थानेदार
0: थानेदार
1: जी
0: में कौन सा वाला सुनना है।
1: जी गाने के बोले से जीना है तो हंस के जियो,
0: ओके
1: जीने को
0: रुकिए, थानेदार में कौन
1: जीना
0: सा।
1: है तो हंस के जियो,
0: ओके किसी को डेडिकेट करना है।
1: चूल्हे तो
0: हाँ
1: आप है, चूल्हे
0: ओके थैंक यू बोले।
1: आप है, और भगवान सिंह परमार, अमोल भट्टाचार्य, प्रेम सिंह सिसोदिया और हमारे सभी श्रोताओं को लाइव सुन रहे हैं।
0: ओके ठीक है तनुश्री, आपका गीत सुनिए और एन्जॉय कीजिए। थैंक यू,
1: ओके, बाय बाय।
0: बाय बाय। শুনি থাকা সববিলাক শুনিব থানেদার ফিল্ম কি গীত গাই আছে আশা ভোসলে, অমিত কুমার, ওকে রিমা লেহরি আর খরচ লাগা আওয়াজতে, আর এই গীত পছন্দ করেছে মধ্যপ্রদেশ প্র তনুশ্রী, আর তারপরা কিছু FM লাগা সাথীবিলাক খান লাগা নাম বি লই গিনা আছে, আর শুনি থাকা সববিলাকে ডেডিকেট করে দিয়ে গিনা আছে। তো শুনিবি আর এনজয় করিবি থানেদার ফিল্ম কি গীত।

0: हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, बोले, आपका शुभ नाम?
1: हीराम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: के भगवान सिंह जी, बोले, आज कौन सा गीत सुनना है?
1: दीदी फिल्म का नाम है कृष्ण कन्हैया।
0: कृष्ण कन्हैया है कि नहीं, नहीं पता नहीं, ये दिखता है,
1: देख लीजिए।
0: ओके, कृष्ण कन्हैया नहीं है
1: तो राज फिल्म मिल जाएगी। कितना प्यारा है ये चेहरा।
0: राज
1: जी,
0: राज
1: और हाँ, राज फिल्म। कितना प्यारा ये चेहरा जिसपे हम मरते हैं।
0: ओके, दिखता हूँ राज में। राज तो बहुत है, कितना प्यारा है उदित और अलका याग्निक का वास
1: हाँ,
0: में ना।
1: जी, बिल्कुल,
0: ओके, किसी को
1: डेलीकेट करना है,
0: डेडिकेट करना है तो नाम ले लीजिए।
1: पहले तो आपको डेलीकेट रहेगा दीदी। शिवा लोहट जी हैं,
0: ओके,
1: और तनुश्री बिटिया हैं, अंजलि भस्मतारी है, रमेश पात्र हैं, अमल भस्मतारी, विमल भस्मतारी, रमेश प्रजापति जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी शिमला से, आशुतोष जी, अविनाश जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी है, और दीदी हमारे मित्र रमेश प्रजापति की बिटिया के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहेंगे दीदी।
0: वो भी सुन रहा है
1: जी, बिल्कुल सुन रहे हैं, और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बिटिया को।
0: ओके, ठीक है भगवान सिंह जी, आपने कॉल किया, आपका कॉल भी लग गया और आपका गीत भी है, सुनिए और एंजॉय कीजिए, और कॉल करने के लिए धन्यवाद। হুনি থাকা সববিলাক শুনিব ৰাজ ফিল্ম কি গীত গাই আছে উদিত নাৰায়ণ আৰু অলকা ইয়াগনিক লগা আৱাজে, আৰু এইটো গীতটো শুনিবলৈ মনোগিনা পচন্দ কৰিছে মধ্য প্ৰদেশ পৰা ভগৱান সিং পৰমা, আৰু তাৰ পৰা ডেডিকেট কৰি দিছে তাৰ লগা কিছুমান সাথীবিলাক আৰু শুনি থকা সববিলাক, আৰু সাথে আটিকা লগা জন্মদিনতে তাৰ উইচ কৰি দি কিনে তাৰ কিবি ডেডিকেট কৰি দি কিনে আছে। তো আমি খান সব মিলি কিনে শুনিব উদিত নাৰায়ণ আৰু অলকা ইয়াগনিক লগা আৱাজে ৰাজ ফিল্মত।

0: गांव का नाम अंशमहल बुगला से बात कर रहा मैडम।
1: के राजस्थान से
0: मैडम।
1: ओके बोलिए।
0: नाम रहेगा मैडम बंधन।
1: बंधन, बंधन में कौन सा गीत सुनना है?
0: इसका टाइटल सॉन्ग सुनूंगा मैं।
1: बंधन में ओके टाइटल सॉन्ग कुमार सानू का आवाज में।
0: हाँ ये गाना क्या बोले ये बंधन दिलों के बंधन।
1: ओके किसी को डेडिकेट करना है?
0: जी मैडम सबसे पहले तो आप बताओ आप कैसे हो, काफी दिनों के बाद में मेरा कॉल लगा मैडम आजकल।
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया है।
0: बहुत देर से ट्राई करा था मैडम, अब जाके कॉल लगा तो बहुत खुशी हो रही है मैडम।
1: ओके ठीक है, किसी का नाम लेना है तो ले लो, समय भी जा रहा है।
0: जी मैडम सबसे पहले तो आप है।
1: ओके थैंक यू।
0: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, रमेश पात्रे है, गोल्डी बाई जी है, और अमल है, विमल है, और जितने भी कॉलर सुन रहे हैं उनको। और ये गाना मैं खास कर रमेश प्रजापति भैया जी की, उनकी पोती का जन्मदिन है।
1: ओके
0: तो उनको ये गाना, ये गाना भी क्योंकि उन्हीं पर डेडिकेट मैं सुन रहा था मैडम ये गाना।
1: ओके ठीक है। पुरान वर्मा जी आपका फिल्म का नाम है बंधन और गायक है कुमार सानू, आप सुने और एंजॉय कीजिए, और कॉल के लिए शुक्रिया।
0: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।
1: वेलकम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Leprosy is not a curse. It is a simple bacterial infection and it is 100% curable. Watch out for these early signs. Reddish or light-colored skin patches with a loss of sensation, numbness or tingling in your hands or feet, or muscle weakness. Don't wait. Early treatment prevents disability and permanent damage. If you notice any symptoms, visit your nearest health and wellness center, PHC, CHC, or hospital immediately.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Tracoban
2: 103 MHz
1: News, music and entertainment. FM 103 MHz.
3: Hello, lovelies. Well, before the commercial break, you were listening to Gracie Abrams and Taylor Swift with the song Us here in our Western music program. And now we are going to play for you Fun with Why Am I the One?

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Tracobank 103 MHz News, Music and Entertainment FM 103 MHz.
2: Well, hello, lovelies. Before that commercial break, you were listening to Little Mix and Charlie Butt with the song Oops. And now it is Betty Who with the song High Society.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
7: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलान बतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुक उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलान बतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेस्तेग बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को

0: करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

शिमला मिर्च फिल्म की गीत लगत आकाशवाणी एफ एम ट्रैकोपिन 110 मेगाहर्ट्ज़ पर हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम दिए आज कारण मानुटी शेष कर दिए से आम खाना कलकिया हम आशा कल फुजिर छह बजे शुनी थका सब बिल्कुल गुड नाइट।